हाँ पीलो अतिशया जा मीटा में प्यारी ते किकी जीजे या दीगवा माचे छे दीपनी अजाऊं से तो अपने नारबिया मिशा प्यामी अच्छे से दिया दीमावा मिस मिस विस्की विस्की अच्छे से तारुए हिगा सोमी सुराने ये गे मयोले मू तभी मयोबिले मू दी योबिले मू दी दादा ते साशिं बीबी अच्छे से मी मचोरो अच्छे तो दियो म पिसे बिन्याने मुए यो नाये चिदी मयो नाये मचिबी मचिबी दाला कोई मिटाचे टुई